मैं हूं करण सिंह और इस हफ्ते मैं लाया हूं आप सभी के लिए पोइट्री का सबसे खूबसूरत रूप गजलें, मोहब्बत का सबसे शीरी अंदाज यानी मीठा अंदाज। तो चलिए पहले समा बनाए कुछ गजलों के साथ।

वैसे गजलों की जो परिभाषा है वो बड़ी सरल है, दो प्रेमियों की बातचीत। बस फर्क इतना है कि उस बातचीत को सिंपल शब्दों के बजाय थोड़े अच्छे अच्छे दिलकश लफ्जों के साथ खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है, राइमिंग करके, वरना बातचीत में गहराई कैसे आएगी, खूबसूरती कैसे आएगी, दिलकशी कैसे आएगी। हाँ, एक बात और, गजलें जो होती हैं वो अशआर से बनती हैं। अशआर यानी कई सारे शेर। शेर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वही दो लाइनों वाले, जिन्हें आपने भी कई बार पढ़ा होगा, फिर किसी लड़की को या लड़के को फॉरवर्ड भी किया होगा, शायद ये भी कहा होगा कि मैंने लिखे हैं तुमको सोचकर। तो जो गजलें होती हैं वो कम से कम पांच शेर को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि ये वाली फ्रॉम द फिल्म निकाह।

0: वैसे जब गजलें इजाद की गई थीं, इन्वेंट की गई थीं, तब वो सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करती थीं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे सरका, गजलों ने भी अपनी मियाद यानी अपनी सीमा बढ़ा दी। आखिर बाकी चीज़ों को वो भी कब तक नज़रअंदाज करती। तो गजलों ने फ़लसफ़े को यानि फ़िलासफ़ी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर उसने समाज को लेकर, उसकी कड़वी हकीकतों को लेकर भी मुँह फट होना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो एक सिंगल गज़ल में शायर हर शेर के ज़रिए मुख्तलिफ ख्याल यानि अलग अलग थॉट्स भी बयां कर देता है। तो आइए आपको भी ऐसी कुछ गज़लें सुनाते हैं जिनमें कहीं पर इश्क है तो कहीं पर फ़िलासफ़ी।
1: ये

और अब चलिए बात करते हैं गजलों के स्वरूप की। तो अशार क्या होते हैं ये तो आपको बता दिया, शेर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। इनफैक्ट जो पहला शेर होता है एक गजल का उसे कहते हैं मतला, और हर शेर में चूंकि दो लाइन होती हैं तो पहली वाली को कहते हैं मिसराए उला और दूसरी वाली को कहते हैं मिसराए सानी। अब आपने कई बार एक शेर में किसी शायर का नाम भी सुना होगा, तो उसे हम अंग्रेजी में पेन नेम बोलते हैं जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। इनफैक्ट मिर्ज़ा गालिब साहब को हम गालिब नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब है, वरना उनका असल नाम तो असदुल्ला खान साहब था। अब जैसे कि उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात ये कि जिस शेर में एक शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मख्ता, MAKTA नहीं MAQTA, फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। और दूसरी चीज ये कि जो शेर एक गजल का सार कहता है या उसका कंक्लूडिंग शेर होता है उसे कहते हैं हासिले शेर। कई गजलों में आपने एक सिंगर को ये कहते हुए सुना होगा कि और अब सामीन मैं इस गजल का हासिले शेर अर्ज करना चाहूँगा, और कई बार आपने उस शेर के बाद लोगों को मुकर्रर मुकर्रर कहते हुए भी सुना होगा। तो मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर वंस मोर। तो चलिए अब हम भी यहाँ कुछ बढ़िया गजलें सुनते हैं वंस मोर।

0: यूं तो हिंदी फिल्म म्यूजिक में गजलों का आना जाना काफी वक्त तक लगा रहा। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए, जैसे तलत महमूद हैं, सुरैया हैं, केएल सहगल साहब हैं। इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गजलों को कंपोज किया। लेकिन गजलों को असली मकबूलियत देने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें अव्वल तो हैं मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब भी आए, फिर जगजीत सिंह जी आए, जिन्होंने गजलों में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए और उस वजह से गजलों की रीच काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गजलों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज थे उनको सिंपल हिंदी शब्दों के साथ रिप्लेस करके गाया, जिससे गजलें आवाम तक पहुँच पाईं। फिर पंकज उधास साहब भी आ गए, उसके बाद और भी कई सिंगर्स आए, जैसे तलत अजीज़ हैं, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, और तब से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। वैसे अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसका जो मुखड़ा है वो दरअसल मिर्ज़ा गालिब साहब की एक गज़ल से लिया गया है, जो कुछ यूं थी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो गुलजार साहब ने इस मुखड़े को लिया और इसके आगे अपनी पंक्तियां जोड़कर इसे एक मुकम्मल गीत की शक्ल दी। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को भूपेंद्र जी की आवाज में, और उसके बाद कुछ और गजलें यहीं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभरता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
1: आपने लिखा है, सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
1: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
1: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
1: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
1: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी।
1: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
1: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी।
1: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है, लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी।
1: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
1: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी।
1: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
2: जी।
1: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
2: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
1: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
2: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
1: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
2: जी,
1: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
2: जी।
1: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
2: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
1: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
2: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद

0: सागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
1: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
0: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
0: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है
0: जी।
1: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
0: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
1: वो क्या?
0: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
1: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही
0: जी।
1: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
0: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
1: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
0: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जाने।
1: जी हाँ श्रोताओं, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओं अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े

0: होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
1: चाचा,
2: सच्याकाल।
1: छुट्टी पर आए हो?
2: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
1: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
2: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
1: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
2: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
2: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
2: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
2: जरूर पुत्र, जरूर। लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
1: जी चाचा।
3: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
0: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
3: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
0: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
3: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं।
6: अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
6: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
6: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे ला। एक मिनट, ये पॉलिश देना। हाँ पॉलिश दे। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
3: तो ऐसे थे फ्लाइंग

0: ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
1: एक मिनट मान सिंह, तो मैनु फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ लेता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
2: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान ने भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
2: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
2: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
1: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया, मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
3: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
1: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
2: ऐसे ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से

0: आओ मुकाबला करो।
1: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
2: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों, सेखों 102, सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
1: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
2: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
1: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग। તમે સાંભળી રહ્યા છો 90.4 FM રેડિયો પાલનપુર। હું પ્રિયરાજ સૌ બાળ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું બાળ સભામાં।

गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आजे गुरु पूर्णिमा ना पावन दिवसे आपने एक एवा व्यक्ति नी बात करवा जई रह्या छीए जे कायदेसर शिक्षक नथी, जे कायदेसर प्राध्यापक पण नथी, तो व्यवसाय डॉक्टर छे। एक डॉक्टर अने गुरु कई रीते बनी शके? पर हा, ए आपनी आजनी वार्तामां छे। વાત જાણે એમ છે કે પ્રવીણભાઈ મહેતા પાલનપુરના વતની, મુંબઈ અભ્યાસ કર્યો, ડોક્ટર પ્રવીણ મહેતા બન્યા, એમબીબીએસ પૂરું કર્યું।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

हेलो हाय नमस्कार, दिस इज आरजे अंजलि और आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, ईश्वर क्या करता है? बिरबल बोली, जहाँ पना एक आम चरवाहा भी इसका उत्तर दे सकता है। बादशाह ने बिरबल को एक चरवाहे को दरबार में लाने के लिए कहा। उस चरवाहे से भी वही प्रश्न किया गया तो वह चरवाहा बोला, क्या जहाँ पना यह एक अध्यापक की भांति पूछ रहे हैं या विद्यार्थी की तरह? जहाँ पना बोली, एक विद्यार्थी की तरह। चरवाहा बोला, देखो इस विद्यार्थी की बदतमीजी, वह तो ऊंचे स्थान पर बैठा है और शिक्षक नीचे खड़ा है। अकबर सक पका गए, सिंहासन से उतरे और उस चरवाहे को अपना ताज पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने स्वयं उस चरवाहे के कपड़े पहने, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर पूछा, शिक्षक ईश्वर क्या करता है? चरवाहा बोला, ईश्वर एक चरवाहे को बादशाह और बादशाह को चरवाहा बना देता है। क्या सीखने को मिलता है? जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं होता, जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है या फिर हमारे व्यवहार, समझ और मूर्खता दोनों का परिणाम भी हो सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर, एक ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे अकबर बिरबल की कहानियों में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं अकबर बिरबल की कहानियां। बिरबल की स्वर्ग यात्रा। दरबार का नाई बिरबल से बहुत चीड़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहां पना, आप जानते हैं कल रात मैंने इस स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हजाम से पूछा, बताओ वे तुमसे क्या कह रहे थे? हजाम बोला, वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग में सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजे जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज बिरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दीजिए ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सके। बिरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बिरबल हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बिरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बिरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाए और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ। बिरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। आगे क्या होता है वो हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आरजे अंजलि के साथ ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक सप्ताह बाद बिरबल दरबार में पहुंचे, जहाँ पर ना हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूँ। बिरबल को जीवित जलाया गया। बिरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 महीने तक छुपा रहा। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बिरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहां से आए? स्वर्ग से जहां पना, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए

उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी, केवल एक जहांपना। क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। तो यहाँ खत्म होती है ये कहानी। इससे क्या पता चलता है? जैसी करनी वैसी भरनी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बीरबल की कहानियाँ। कहानी का नाम है आधा इनाम। एक बार महेश दास राजा अकबर से मिलने गया। महल के द्वार के पहरेदारों ने उससे पूछा, तुम्हें राजा से क्या काम है? महाराज ने मुझे बुलाया है, महेश ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर तुम्हें अपने इनाम का आधा भाग मुझे देना पड़ेगा, पहरेदार ने कहा। महेश सहमत हो गया। कुछ माह पूर्व अकबर जंगल में रास्ता भटक गया था, तब महेश ने ही उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाया था। अकबर ने तुरंत महेश को पहचान लिया और उससे पूछा, इनाम में तुम क्या चाहते हो? महेश ने पूछा, 50 कोड़े। कारण पूछने पर महेश ने कहा कि इनाम मिलने के बाद वह बताएगा। 25 कोड़े खाने के बाद महेश ने सिपाहियों को रोका और द्वार पर खड़े पहरेदार को बुलवाया। इनाम पाने की लालसा से पहरेदार बहुत प्रसन्न हो रहा था। महेश ने कहा, इस पहरेदार ने मुझे आधा इनाम देने के लिए कहा था, अतः अब शेष 25 कोड़े इसे लगाए जाए। इस प्रकार पहरेदार को 25 कोड़े खाने पड़े। अकबर ने महेश को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया और वह बीरबल कहलाया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर

वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। कहानी का नाम है महेश दास और पर्वत।

आगरा के एक गांव में एक दिन एक विशाल काय भारोत्तोलक आया। उसने अपने सिर पर 500 किलो वजन उठा लिया और अपने कारनामों से लोगों को आकर्षित करने लगा। उसको देखकर लोग रोमांचित हो उठे, उसका उत्साह ज्यादा बढ़ने लगा। तभी महेश दास नामक एक शरारती बालक ने सामने आकर कहा, अरे यह क्या है, मैं तो पर्वत को अपने कंधों पर उठा सकता हूँ, पर मुझे स्वयं को तैयार करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और 3 माह का समय चाहिए। गांव वाले राजी हो गए और महेश को घी मक्खन युक्त अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 महीने बाद गांववासी महेश का कारनामा देखने के लिए निर्धारित दिन पर एकत्रित हुए। महेश पर्वत के पास जाकर खड़ा हो गया। गांव के मुखिया ने कहा, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? पहाड़ को उठाकर मेरे कंधों पर रखने के लिए आप अपने आदमियों को कहिए। मुखिया ने पूछा, पर्वत को कौन उठाएगा? शांत भाव से महेश ने कहा, उसका निर्णय आप करें। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक दिन एक व्यक्ति ने अकबर के दरबार में जाकर कहा कि हसन नामक एक गरीब व्यक्ति ने उसका गले का हार चुरा लिया था। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हसन ने चुराया है? मैंने हसन को हार चुराते देखा था, किंतु हसन ने बार बार यही कहा, नहीं श्रीमान, मैंने हार नहीं चुराया। उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुमने हार नहीं चुराया तो तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। लोहे की गर्म सरिये को तुम्हें अपने हाथों से पकड़ना होगा। यदि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो तुम्हें निर्दोष माना जाएगा, और यदि तुम्हारा हाथ जलेगा तो चोरी तुमने की है ये मानना पड़ेगा। हसन ने कहा, कृपया मुझे एक दिन का समय दे, मैं हार फिर से ढूंढता हूँ। हसन भागा भागा बिरबल के पास सलाह लेने पहुंचा। अगले दिन बिरबल की सलाह पर हसन ने कहा, महाराज, मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले इन्हें यह परीक्षा देनी होगी। यदि इनकी बातों में सच्चाई है तो गर्म सरिये से इनके हाथ भी नहीं जलने चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया। उसने कहा, एक बार मुझे फिर से देख लेने दीजिए, संभव है कि हार मेरे घर के किसी कोने में गिर गया हो। यह कहकर महाराज का अभिवादन कर वह भाग खड़ा हुआ। थी ना रोमांचक कहानी? यही है अकबर बिरबल की कहानियाँ। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

सोने की अशर्फिया पुरस्कार में दी जाएगी। एक गरीब व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि बर्फीले पानी में आखिर रात भर वह कैसे खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने कहा, ठंडे से अपना ध्यान हटाकर मैंने सड़क पर जल रही बत्ती पर अपना ध्यान टिका दिया। यह सुनकर अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने धोखे से चुनौती पूरी की है, अतः यह पुरस्कार का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बिरबल से सहायता मांगी। अगले दिन बिरबल समय पर दरबार में नहीं आया। कारण जानने के लिए अकबर उनके घर गए। अकबर ने बिरबल को जमीन पर बैठा देखा। पास में ही आग जल रही थी और आग से 5 फीट ऊपर एक हड़िया में खिचड़ी टंगी हुई थी। अकबर ने पूछा, आग से हड़िया इतनी दूर है तो भला खिचड़ी कैसे पकेगी। बिरबल ने कहा, ठीक उसी तरह जैसे गरीब व्यक्ति को सड़क पर जल रही बत्ती से गर्मी मिली थी। अतः अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कृत किया। कैसी थी कहानी, जरूर बताइएगा। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आप सुन रहे हैं अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक दिन की बात है, महाराज अकबर किसी गहरी सोच में थे। अचानक अपने विचारों से निकलकर उन्होंने बिरबल से पूछा, यदि न्याय और स्वर्ण मुद्रा में से किसी एक को तुम्हें चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? श्रीमान, मैं स्वर्ण मुद्रा को चुनूंगा, बिरबल ने तुरंत उत्तर दिया। अकबर बिरबल का उत्तर सुनकर हैरान थे। सभी दरबारियों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काफी समय से वे बिरबल को नीचा दिखाने की ताक में थे और बिरबल ने स्वयं उन्हें यह अवसर प्रदान कर दिया। अकबर ने कहा, बिरबल, मेरे सेवकों में से किसी ने यह बात कही होती तो मैं मान लेता, पर मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं थी। बिरबल ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जिसके पास जो नहीं होता है वह उसी की इच्छा करता है। आपके राज्य में मेरे साथ साथ सभी के पास न्याय है। हाँ, धन की कमी अवश्य है, इसीलिए मैंने स्वर्ण मुद्रा का चयन किया। अकबर ने बिरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर उसे एक नहीं, 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियाँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। अकबर के दरबार में एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज मेरी समझ से बिरबल बुद्धिमान नहीं है, पर हाँ यदि वह मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को मान लूंगा। अकबर सहमत हो गए। उन्होंने बिरबल से कहा कि यदि उससे प्रश्नों

के सही उत्तर नहीं दिए तो वह दंड का अधिकारी होगा। दरबारी ने 3 प्रश्न पूछे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का मध्य कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, संसार में कितने स्त्री और पुरुष है? बीरबल तुरंत एक भेड़ लेकर आया और बोला, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है। फिर बीरबल ने धरती पर 2 रेखाएं खींची और उनके बीच एक लोहे का सरिया रखकर उसे ही धरती का मध्य बताया। तीसरे प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने कहा, पुरुष और स्त्री की सही संख्या तो बताना जरा कठिन है, क्योंकि दरबारी जैसे नमूने तो दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। शर्मिंदा हुए दरबारी ने बीरबल से क्षमा याचना की। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बीरबल की कहानियां। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर आरजे अंजलि के साथ अकबर बिरबल की कहानियाँ। एक गरीब किसान ने अपने समृद्ध पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। कुआं बेचने के बाद भी समृद्ध व्यक्ति उसका जल प्रयोग करता रहा। गरीब किसान को बहुत क्रोध आया। उसने अकबर को जाकर अपनी समस्या बताई। किसान की समस्या सुनने के बाद अकबर ने उस समृद्ध

व्यक्ति से पूछा, कुआं बेचने के बाद भी तुम उस पानी का उपयोग क्यों कर रहे हो? समृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज मैंने तो केवल कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं बेचा है। अकबर दुविधा में पड़ गए। इस समस्या का निदान उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बिरबल से सहायता ली। बिरबल ने समृद्ध व्यक्ति से कहा, तुमने किसान को कुआं बेचा है पर पानी नहीं, क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी श्रीमान यह सच है। ऐसी स्थिति में अपना जल कुएं में रखने का किराया तुम्हें किसान को देना पड़ेगा, बिरबल ने कहा। समृद्ध व्यक्ति समझ गया कि वह फंस गया है, यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। उसने किसान से क्षमा याचना की और चुपचाप वहां से चला गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। मस्त रहे, व्यस्त रहे और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एक दिन अकबर ने बिरबल से क्रोध होकर उसे राज्य छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया। सम्राट की आज्ञा मानकर बिरबल चला गया। कुछ दिनों के बाद अकबर को बिरबल की याद सताने लगी। अकबर ने अपने दूतों को बिरबल को ढूंढने भेजा, पर बिरबल उन्हें कहीं नहीं मिला। अतः अकबर को एक युक्ति सूझी। अपने राज्य के गांव में उसने एक संदेश भेजा, 3 माह के भीतर आपको चतुराई से भरा घड़ा भेजना होगा। अगर आप असफल रहे तो हीरे जवाहरात से भरा घड़ा आपको राजा के पास भेजना होगा। राजा का संदेश पाकर गांव के मुखिया परेशान हो उठे। बिरबल

एक गांव में छिपा हुआ था। गांव के मुखिया से जाकर उन्होंने कहा, मैं राजा को चतुराई भरा घड़ा भेजूंगा। बिरबल एक घड़ा लेकर अपने बगीचे में गया। लता में लगे हुए एक छोटे तरबूज को उसने घड़े में रख दिया। 3 माह बाद तरबूज ने बड़े होकर घड़े को भर दिया। उसने घड़े को अकबर के पास यह लिख कर भेजा, घड़े को तोड़े बिना चतुराई को निकाल ले। अकबर ने तुरंत पहचान लिया कि यह बिरबल की ही करतूत है। वह स्वयं उस गांव में जाकर बिरबल को अपने साथ वापस ले आए। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। कार्यवाही चल रही थी, तभी एक समृद्ध व्यक्ति ने आकर कहा, मेरे पैसों की चोरी हो गई है। मुझे मेरे सेवक पर शंका है, पर किसने चोरी की है यह मैं नहीं बता सकता। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बिरबल ने समृद्ध व्यक्ति के घर जाकर सेवकों से पूछताछ की, क्या उन्होंने चोरी की थी, पर उन सब ने नकार दिया। कुछ पल सोचकर बिरबल ने सभी सेवक को एक एक छड़ी देकर कहा, यह जादुई छड़ी है, अभी यह सब एक बराबर है, पर चोरी करने वाले की छड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। तुम सब घर जाओ और कल सुबह छड़ी लेकर आना। अगले दिन बिरबल ने ध्यानपूर्वक उन सभी छड़ियों को देखा। उसे एक छड़ी 2 इंच छोटी लगी। ओहो, तो तुमने ही चोरी की है। ये छड़िया साधारण छड़िया ही है, इनमें कोई जादू नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो गया और तुमने अपनी छड़ी 2 इंच छोटी कर दी। फिर समृद्ध व्यक्ति ने बिरबल से कहा, वही चोर है, और सजा के रूप में चोर को जेल भेज दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर अकबर बिरबल की कहानियां। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए रेडियो पालमपुर।

मैं हूं करण सिंह और इस हफ्ते मैं लाया हूं आप सभी के लिए पोइट्री का सबसे खूबसूरत रूप गजलें, मोहब्बत का सबसे शीरी अंदाज यानी मीठा अंदाज। तो चलिए पहले समा बनाए कुछ गजलों के साथ।

वैसे गजलों की जो परिभाषा है वो बड़ी सरल है, दो प्रेमियों की बातचीत। बस फर्क इतना है कि उस बातचीत को सिंपल शब्दों के बजाय थोड़े अच्छे अच्छे दिलकश लफ्जों के साथ खूबसूरत अंदाज में बयां किया जाता है, राइमिंग करके, वरना बातचीत में गहराई कैसे आएगी, खूबसूरती कैसे आएगी, दिलकशी कैसे आएगी। हाँ, एक बात और, गजलें जो होती हैं वो अशआर से बनती हैं। अशआर यानी कई सारे शेर। शेर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वही दो लाइनों वाले जिन्हें आपने भी कई बार पढ़ा होगा, फिर किसी लड़की को या लड़के को फॉरवर्ड भी किया होगा, शायद ये भी कहा होगा कि मैंने लिखे हैं तुमको सोचकर। तो जो गजलें होती हैं वो कम से कम 5 शेर को जोड़कर बनाई जाती हैं, जैसे कि ये वाली फ्रॉम द फिल्म निकाह।

वैसे जब गजलें इजाद की गई थीं, इन्वेंट की गई थीं, तब वो सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें करती थीं। मगर जैसे जैसे वक्त आगे सरका, गजलों ने भी अपनी मियाद यानी अपनी सीमा बढ़ा दी। आखिर बाकी चीज़ों को वो भी कब तक नज़रअंदाज करती। तो गज़लों ने फ़लसफ़े को यानि फ़िलासफ़ी को भी इंक्लूड कर लिया, फिर उसने समाज को लेकर, उसकी कड़वी हकीकतों को लेकर भी मुँह फट होना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो एक सिंगल गज़ल में शायर हर शेर के ज़रिए मुख्तलिफ ख़याल यानि अलग अलग थाट्स भी बयां कर देता है। तो आइए आपको भी ऐसी कुछ गज़लें सुनाते हैं जिनमें कहीं पर इश्क है तो कहीं पर फ़िलासफ़ी। ये

और अब चलिए बात करते हैं गजलों के स्वरूप की। तो अशार क्या होते हैं ये तो आपको बता दिया, शेर क्या होते हैं ये भी आपको बता दिया। इनफैक्ट जो पहला शेर होता है कि गजल का, उसे कहते हैं मतला। और हर शेर में चूंकि दो लाइन होती हैं, तो पहली वाली को कहते हैं मिसराए उला और दूसरी वाली को कहते हैं मिसराए सानी। अब आपने कई बार एक शेर में किसी शायर का नाम भी सुना होगा, तो उसे हम अंग्रेजी में पेन नेम बोलते हैं, जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। इनफैक्ट मिर्ज़ा गालिब साहब को हम गालिब नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका तखल्लुस गालिब है, वरना उनका असल नाम तो असदुल्ला खान साहब था। अब जैसे कि उनका एक शेर आपको सुनाता हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और दूसरी बात ये कि जिस शेर में एक शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं मख्ता। MAKTA नहीं, MAQTA, फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस। और दूसरी चीज़ ये कि जो शेर एक गज़ल का सार कहता है या उसका कंक्लूडिंग शेर होता है उसे कहते हैं हासिले शेर। कई गज़लों में आपने एक सिंगर को ये कहते हुए सुना होगा कि और अब सामीन मैं इस गज़ल का हासिले शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। और कई बार आपने उस शेर के बाद लोगों को मुकर्रर मुकर्रर कहते हुए भी सुना होगा। तो मुकर्रर का मतलब होता है वंस मोर वंस मोर। तो चलिए अब हम भी यहाँ कुछ बढ़िया गज़लें सुनते हैं।

0: के चलिए।
1: यूं तो हिंदी फिल्म म्यूजिक में गजलों का आना जाना काफी वक्त तक लगा रहा। कई सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए, जैसे तलत महमूद हैं, सुरैया हैं, केएल सहगल साहब हैं। इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गजलों को कंपोज किया, लेकिन गजलों को असली मकबूलियत देने में जिन लोगों का हाथ है, उनमें अव्वल तो हैं मेहदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब भी आए, फिर जगजीत सिंह जी आए जिन्होंने गजलों में कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए और उस वजह से गजलों की रीच काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गजलों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज़ थे उनको सिंपल हिंदी शब्दों के साथ रिप्लेस करके गाया, जिससे गजलें आवाम तक पहुँच पाईं। फिर पंकज उधास साहब भी आ गए, उसके बाद और भी कई सिंगर्स आए जैसे तलत अजीज़ हैं, भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, और तब से ये सिलसिला आज तक चलता रहा है। वैसे अब जो अगला गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसका जो मुखड़ा है वो दरअसल मिर्ज़ा गालिब साहब की एक गज़ल से लिया गया है, जो कुछ यूं थी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। तो गुलजार साहब ने इस मुखड़े को लिया और इसके आगे अपनी पंक्तियां जोड़कर इसे एक मुकम्मल गीत की शक्ल दी। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को भूपेंद्र जी की आवाज़ में और उसके बाद कुछ और गज़लें यहीं।
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।